व्याक्षरधामथी अवनीमा ऐश्वर्य मुक्तोलई शुभ अक्षर सात सुंदर छवि लावण्य ते जो मई करता दिव्य सदा रहे प्रगट जे साकार सर्वोपरि सहजानंद कृपाणुने नित नमो सर्वावतारे हरे शोभो साधु गुणे सदा सरणने जगते अनासक्त छो शास्त्री जे गुरु योगी जे उभयनि कृपा तनु पात्र छो धारी धर्म धुरा समुद्र सरखा गंभीर ज्ञाने जछो नारायण स्वरूप दास गुणिने स्नेहे जवंदु अहो श्री स्वामी नारायण भगवान नी जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय गुणातीतानंद स्वामी महाराज नी जय भगत जी महाराज नी जय शास्त्री जी महाराज नी जय योगी जी महाराज नी जय

0: आराय।
1: तो साधन अपार करे तो पण फळ मळतुं नथी। बधी सेवा भक्ति बधुं करो तमे, फळ मळे नहीं, अटकी रहे। बनाए आपणे अहींया एंटर थवामां पटकी रहे, महिमा समझो तर एंटर थी जाए महिमा।